गावन सुन सब तेरा पहाना, हुक्म बूझै सो साई समाना, जब जब जीवै तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दुख सो करते हुक्म रजाए, पाणे बख्श पाणे दे सजाए, दुहां सिरियां का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझै सुने आप वखाने, सेई भगत जो तुद पाणे, नानक तिन कै सद कुरबाणे, मलार महला पंजवां, परमेसर होवा दयाल, मेघ वरसै अमृत तार, सगले जी जंत त्रिपतासे, कारज आए पूरे रासे, सदा सदा मन नाम संभाल, गुरपूरे की सेवा पाया, एथै उथै निभै नाल, रहाओ दुख पन्ना पै पंजनहार, अपने जिया की कीती सार, रखण हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुरबान, काल गवाया करता आप, सदा सदा मन तिसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भक्त जाने प्रताप, नावें की पैज रखदा आया, नानक बोलै तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुरसरनाई सगल निदान, साची दरगह पाई है मान, प्रम पाओ दुख दर्द सब जाए, सा संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुरपूरा सा लाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चंदे फल पाए रहाओ, सतगुर जेवड़े अवर ना कोए, गुरपार ब्रह्म परमेसर सोए, जन्म मरण दुख ते राख, माया बिख फिर बहुन ना चाख, गुर की महिमा कथन ना जाए, गुर परमेसर सच नाए, सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संगराची, गुरपूरा पाइए वडभाग, काम क्रोध लो मन ते त्याग, कर कृपा गुरचरण निवासे, कर कृपा गुरचरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास, राग मलार महला पंजवां, पड़ताल करती जाए को अंकार, सतगुर प्रसाद, गुर मनार प्रे दयार, स्यों रंग किया किन्नोरी सगल सिंगार, तजोरी सगल बेकार, ताप तो अस्थिर थिया रहाओ, ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै, कर साधन स्यों संग, बाजे बजै मृदंग, अनाहद को कलरी, राम नाम बोलै मधुर बैन अत सुहिया, ऐसी तेरे दर्शन की सोभ, आत्या पार प्रया मोग, तैसे ही संग संत बने, पाव उतार नाम पने, राम राम राम माल, मन फेरते हर संग संगिया, जन नानक प्रयो प्रीतम थिया, मलार महला पंजवा, मन कने प्रमे बने, उमकत रस चाले, प्रमिलबे की चाह रहाओ, त्रै गुण माई मोहे आई, कहो बेदन काहे, आने उपाव सगर किए, न दुख सा कैलाहे, पज सरन साधु नानका, मिल गुण गोबिंद गाहे, मलार महला पंजवा, प्रेकी सोब सुहावनी निकी, हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ, तुनत ललत गुनाग अनक पांत, बहुबिध रूप दिखावनी निकी, गिर तर थल जल पवन भरपुर, कट कट लालन छावनी निकी, साध संग रामैया रस पायो, नानक जाकै पावनी निकी, मलार महला पंजवा, गुरप्रीत प्यारे, चरण कमल हृदय अंतर तारे, रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो, गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे, बिसम बिसमै बिसम पई, अड़ग कोट हरते नाम लई, गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे, जन नानक शरण द्वारे, मलार महला पंजवा, बरस सरस आ गया,
होहे आनंद सगल पहाग रहाओ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ तर सुहाग कहन कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोह मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पहे दयाल बिनस गए बिखै जंजाल साज जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत। मलार महला पंजवा कान गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल रहाओ प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद चकवी नैन नींद न चाहे बिन पिर नींद न पाई सूर चरै प्रयो देखे नैनी निम निम लागे पाई फिर पावे प्रेम सिखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ सरवर कमल किरण आकाशी बिकसै सह सुभाई प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिलप करे बिल लाई कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खेन तिल रह न सकै पल जन बिन मरण जीवन तिस्ताई तन वांडी पिर देश निवासी सचे गुरपै शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभृदय निवासी भगत रति हर खाई प्रयो प्रयो करै सब ही जेती गुर पावै प्रयो पाई प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई सब मैं जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच डर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिनस्त बार न लागे बवरे हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ जय जगदीश प्रभु रखवारे राखे परखे सोई जेती है तेती तुझ ही ते तुम सरेवर ना कोई जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन कागद कोट एहो जग है बपरो रंगन चिहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरै खिनताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहां कर तरवर सरपन डसै दूजा मन माही गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिखिया गुरमत जारी मन तन हेम पय सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाचै तू सर्ब जिया दयाला
तुमरी शरण

जल ही ते सुख पावै, सारंग शब्द सुहाई, रैन बिहा बोल्यो मेरी माई रहाओ। प्रेस्यो प्रीत ना उल्टै कबहू, जोतै पावै साई। नींद गई हो मैं तन थाकी, सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा, पीवा नाम सुभाई। लोचन तार ललता बिललाती, दर्शन प्या सिरजाई। प्रे बिन सिंगार करी, तेता तन तापै, कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका, बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी, सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुई ते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। बलार महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली

रहाओ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कह तकिए सचै तान नाम समार सरूड़ी बाण थै पावे दरले स्पिराण ऊंडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना उची तार निज करवासा तह मगना चल नहार जित कर वसै तू है बिद जाने बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दग ब्याशा पै करण पलाव करै बिल लातो बिन गुर नाम ना जापै पल पंकज मै नाम छडाए जे गुर शब्द सिंपै एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मुख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी इंद वरसै तरत सुहावी कट कट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे बांधा कार कमाए एक शब्द रचै सच समाए चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं जामन मरना दिसै सिर उबो खुदया निंद्रा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जा चर दे समाल रहाओ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्व जी की ये प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत पारी ऊंडना सांके पंख पसारी रस चूगे मन मुख गावार फाती छूटे गुण ज्ञान विचार सतगुर सेव टूटे जमकाल हृदय साचा शब्द समाल गुरमत साची शब्द है सार हर का नाम रखे उरतार से दुख आगे जे

हर हर कृपा करी जगदीसर, दुरमत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ। नाना रूप रंग हर तेरे, कट कट राम रहो गुपलाक। हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिखिया के ताक। संत जना की बहुत बहुत शोभा, जिन उर तारियो हर रस कर साक। हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बशराक। हर के संत जना मैं हर हर, तेजन उत्तम जनक जनाक। तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुस्की मुस्काक। तुमरे जन तुम ही प्रभ की है, हर राख ले हो अपने अपनाक। जन नानक के सखा हर पाई, मात पिता बंद पहर साक। कानड़ा महला चौथा, मेरे मानो हर हर राम नाम जप चीत। हर हर वस्त माया गढ़वेड़ी, गुर के शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ। बिखिया परम परम बहु प्रमया, लुभ दो पुत्र कलत्र मोह प्रीत। जैसे तरवर की तुष छाया, खिन में बिनस जाए देह पीत। हमरे प्राण प्रीतम जन उत्तम, जिन मिलिया मन होए प्रतीत। परचे राम रव्या कट अंतर, अस्त्र राम रव्या रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लह न उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतत पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगुनाथ। घूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ रहाओ। स्वामी अपै निरंजन नर हर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लोह तरे संग साथ। तुम वड पुरख वड अगमा गोचर, हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे परम्पर स्वामी, तू अपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्टया गोचर नाम ते आए, सत संगत मेर साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जपियो अकथ कथ काथ। हमरे प्रभ जगदीश गोसाई, हम राख लेहो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करहो कृपा राखो जन साथ। कानड़ा महला चौथा, पड़ताल कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन जापो राम गोपाल, हर तंज वेहर लाल। हर गुरमुख कर टकसाल।

रामो राम। सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम। जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम। कानड़ा महला चौथा। सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट। भज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट। रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट। कर पेख ना पाईऐ हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ, सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना। गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा। तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट। तू जाने सब विद बूझै आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट। कानड़ा महला चौथा। जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो। मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लीला दो। रहाओ बिख माया संच बहु चितै बिकार, सुख पाइए हर पज संत संत संग दी। मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यों शोहे पारस मनूर पए कंचन। त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुध हादो। ज्यों काष्ट संग लोहा बहु तरता, त्यों पापी संग तरे साध साध संगति। गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है। कोई मिले गुरु गुरु नानक, सो आप तरह कुर सगल तरा दो। कानड़ा महला चौथा। हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान। मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान। रहाओ तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै। पज हर हर नाम निधान, उस्त करह प्रभ तेरिया। मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावै। ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे। जन नानक के हर तू।

नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेता है, सोग नहीं सदा हर की है रे, छोड़ नहीं किस लेता है। कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमत है, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत पए तेह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गह रहे अटकाए, अनक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम हो माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग बिनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवनो, नाम हमारे प्राणाधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इशनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल बिखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ ला

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुर मेरो कानड़ा महला पंजवा बिखे दल संतन तुमरे गायो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन पेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सह समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरे बिन सह मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाई है साज जना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभृदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तहावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जने अपने अंध कोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहं मातो आन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाग गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार भूम पागे बिखैरा स्यो आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोयत खोयत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराध गुर सतगुर चरनी लाग हर पावो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभा पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगते उदारण नाम प्रे तेरे नवनिद नाम निदान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत ले रहे रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांचो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोर
किछ संग ना चाले लाख करोर है, प्रभ जी को नाम अंत पकरोर है, मनसा मान

मेरा दर्शन प्यास बहुत मन मेरा मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवां ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन प्रभ पए है कृपेन मान मोह त्याग छोड़ो तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवां रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अर नंगा पूजा चार करत में लंगा चक्कर कर्म तिलक खा टंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठ निगरह अत रहत बिटंगा हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ जैसी करी प्रभ मोसियो ऐसी हों कैसे कराऊं हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रभ थान थे रोके हरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलियो जो भाव तो जन नानक ठाक रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवां कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागी है गुमान मान पेखता दयाल लाल हां हां मन चरण रेन रहाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान हृदय गोबिंद गाए चरण कमल प्रीत लाए दीन दयाल मोहना कृपाल दया मया तार नानक मांगे नाम दान तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवां प्रभ कहन मलन दहन लहन गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ तटन खटन जटन होमन नाही डंड धार सुवाओ जतन पांतन तपन भ्रमन अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवां करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पावन भगत पवछल पै हरन तारन तरन रहाओ नैन तिबते दर्श पेख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ या नाथ दाते दीन गोबिंद सरन आस पूर्ण दुख बिनासन गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवां चरण सरण दयाल ठाकर आन नाही जाए पतत पावन बिरद स्वामी उधर ते हर त्याए रहाओ संसार गार बेकार सागर पतत मोह मान अंध बिकल माया संग तंद कर गह प्रभ आप काढ़ो राख लियो गोबिंद राए अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप विनाश मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवां वार वारो अनक डारो सुख प्रे सुहाग पल करात रहाओ कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इन स्यों तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सू

प्रेप्रीत प्यारो मोरो रहाओ, गृह से सुहावी आंगन चैना तोरो री तोरो, पंच दूतन स्यो संग तोरो, आए ना जाए बसे निज आसन, ऊंद कमल बिग सोरो, छुटकी हम मैं सोरो, गायो री गायो प्रभ नानक गुनी गहेरो, कनड़ा महला पंजवा करनावा, ता ते जाप मना हर जाप, जो संत बेद कहत पंथ गाखरो, मोह मगन अहंताप रहाओ, जो राते माते संग बपरी, माया मोह संताप, नाम जपत सौ जन उदर, जिसे उधारो आप, बिनस जाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवा कर दसवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जात जियो बलिहार, मान मोही पंच दोखी, उर्ज निकट बसेओ, ताकी शरण साधुआ, दूत संग निवार रहाओ, कोट जन्म जोन प्रमेओ, हार पर्यो द्वार, कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार, दुलाभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा कर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सह सुभाए अपने आए, कशु ना जानो कशु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कथु ना जाए करै बसाए, गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै, चरण लुभाए अंत जाए, थान थन आए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोलै, कानड़ा महला पंजवा, गोविंद ठाकर मिलन दुराई, परमित रूपा गामा गोचर, रहो सर्व समाई रहाओ, कहन पवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक्यो पावरे, तव मिलियो जौ कृपाई, प्रभु दयार कृपाल कृपा निद, जन नानक संत रे नाई, कानड़ा महला पंजवा, माई सिमरत राम राम राम, प्रभ बिना नाही होर, चितवो चरनार बिंद, सासन निस्पोर रहाओ, लाए प्रीत कीन अपन, टूटत नहीं जोर, प्राण मन तन सर्ब सो, हर गुण दे सुख मोर, ईत ऊत राम पूर्ण, निरखत रिद खोर, संत सरन तरन नानक, बिरस्यो दुख कोर, कानड़ा महला पंजवा, जन को प्रभ संगे असने हो, साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरे सबके हो रहाओ, मान मांगो तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत देह, मुकत जुगत भुगत पूर्ण, परमानंद परम निधान, पै पाए भगत निहाल नानक, सदा सदा कुर्बान, कानड़ा महला पंजवा, करत करत चर्च चर्च अहंचरी, करत करत चर्च चर्च चरचरी, जोग ध्यान पेख ज्ञान, फिरत फिरत तरत तरत तरचरी, रहाओ अहं अहं अह अवर मूड मूड मूड बवरई, जत जात जात जात, सदा सदा सदा काल है, मान मान मान त्याग, मृत मृत निकट निकट सदा है, हर हरे हरे पाज, कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई, कानड़ा अष्टपदियां महला चौथा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जप मन राम नाम सुख पावै गो, ज्यो ज्यो जपै त्वै सुख पावै, सतगुर सेव समावै गो रहाओ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावै गो, अनरस साध गए सब निकर, बिन नामै किछ ना सुखावै गो, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बजन कढ़ावै गो, सतगुर बाणी पुरख पुरखोत्तम, बाणी सो चितलावै गो, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज करे।

गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमरै, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवै हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटै नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैं मैल लग थई, गुर तार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प्या रापो, कोई मिले प्रभ मिलथे।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै, मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै, साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै, तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै, हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै, राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ, स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय, हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै, माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय, मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै, चंदन वास पयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै, काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद शेद रस पीजै, आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय, महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दी जय, साधु साधु साध जनी के जनंतर नाम तरी जय, परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखी जय, साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नी जय, तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै, अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै, मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मिलीजै, नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै, कल्याण महला चौथा, रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जनी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ, जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय, बसदा तला तला सब उपर, मिल साधु चरण रुली जय, अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय, गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय, मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय, राम नाम अनुग्रो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय, गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय, साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय, ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिलै वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

गुरबचन ते आयो करी मीक प्रभाती महला चौथा। आगम दयाल कृपा प्रभतारी मुख हर हर नाम कहे पतत पावन हर नाम ते आयो सब किल विख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ। काया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगटयो कर मंदिर हर प्रभ लहे। जो नर परम परम उदयाने ते सागत मूड मोहे ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना परम प्रम्यो चार गहे। तो वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक कहो गुर हाथ सिर तरयो हर राम नाम रव रहे प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने ही अर हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरपूरै हर नामा मन तन बसफा रहाओ। काया नगर वस्यो कर मंदर जप सोभा गुरमुख कर पफा हलत पलत जन पहे सुहेले मुख उज्जल गुरमुख तरफा अनपव हर हर हर लिव लागी हर उर तारयो गुरनिमुखफा कोट कोट के

हर हर आप धरियो हर जन मैं जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बहदे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपुरे हर प्रभ लब्बा रहाओ। राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसबा। लोह मनूर कंचन मेर संगत हर उर तारियो गुर हरबा। हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने पुत कलत मोहे लुभबा। तिन पग संतन सेवे कभू ते मनमुख पूंबर परबा। तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन बा। ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। शका एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मानो हर हर नाम निधान हर दरगह पावे मान। जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान। जप मन परमेश्वर प्रदान खिन खोवे पाप कोटान। मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विभास। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा तरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते हर सोग ते रह निरारा। ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थन मीत सो हर सेवो नीता नीत। तहां सिखाई जै कोई ना होवै कोट अपराध एक खिन में तो होवै। दात करै नहीं पछोतावै एका बख्स फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवा। प्रभ की सेवा जन की शोभा काम क्रोध मिटे तिस लोभा। नाम तेरा जन कै पंडार गुण गावे प्रभ दर्स प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई काढ़ जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जन पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै न जाए अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा। गुण गावत मन होए आनंद आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइय हर सिमरन जिस गुर ते पाइय। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया। हलत पलत जिन गुरै सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी गुरपुरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव वड्डे पाग पाइए हर सेव। प्रभाती महला पंजवा। सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुर्त मिटाया। हम बारक शरण प्रभ दयाल
अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल रहाओ। ताप पाप बिन सेखिन पीतर पय कृपाल गुसाई सासा स्पार ब्रह्म आराधी अपने सतगुर कैबल जाई। अगमै गोचर बेअंत स्वामी ता का अंत ना पाई लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगह सोभावंते सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोग सब बिनसै अज्ञान अंधेरा मन ते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत हर के नाम सो लागी प्रीत कोट जन्म के गए कलेस ज्योतिष पावे सुफल होस तिस गुर कहो सदा बल जाई जिस प्रसाद हर नाम ते आई ऐसा गुर पाई है वडभागी जिस मिलते राम लिव लागी। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल घटा के अंतर जामी आठ पहरे अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवा कर कृपा अपने प्रभ की है हर का नाम जपन कौ दिए आठ पहर गुण गाए गोबिंद पै बिन से उतरी सब चिंद उबरे सतगुर चरनी लाग जो गुर कह सोई पल मीठा मन की मत त्याग रहाओ। मन तन वस्या हर प्रभ सोई कल कलेश किश विघन ना होई सदा सदा प्रभ जी कह संग उतरी मैल नाम कह रंग चरण कमल से लागो प्यार बिन से काम क्रोध हंकार। प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर स्यो मन माना सुन सज्जन संत मीत सुहेले नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निद गाई है कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा से धनवंत से ही सच साहा हर की दरगह नाम विसाहा हर हर नाम जपो मन मीत गुरपूरा पाई वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुरप्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उत्तर सपार प्रभाती महला पंजवा गुरपुरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा सद अटल्ला गुर की बाणी जिस मन वसै दुख दर्द सब ता का नसै हर रंग राता मन राम गुण गावे मुक्तो साधु तुहरी नावै रहाओ। गुर प्रसादी उतरे पार पाओ परम बिन से बेकार।

आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्ज सगला रास्ती आ रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द परम बिन से झूठे। नित उठ गावो प्रभ की बाणी आठ पैर सिमरो प्राणी। घर बाहर प्रभ सबनी थाई संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ सूढ़ सुजान। गुर पूरा पाई है वडभागी दर्शन को जाइए कुर्बान। रहाओ किल बिख मेटे शब्द संतोख नाम आराधन होवा जोग। साध संग होवा प्रगास चरण कमल मन माए निवास। जिन किया तिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ। जिसे नवाजे कृपा तार पूर्ण कर्म ताके आचार। गुण गावे नित नित नित नवे लख चौरासी जोन न पवे। इहां उहां चरण पुजारे मुख उजर साचे दरबारे। जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास। जलथल महियल पेखे भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर। प्रभाती महला पंजवां कुर्बान जाई गुर पूरे अपने। जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाओ। अमृत बाणी सुनत निहाल बिरस गए बिखिया जंजाल। साच शब्द सिउ लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत। नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास। गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पै निहाल। प्रभाती महला पंजवां गुर गुर करत सदा सुख पाया। दीन दयाल पै कृपाला अपना नाम आप जपाया। रहाओ संत संगत मिल भया प्रगास हर हर जपत पूर्ण पई आस। सर्व कल्याण सुख मन उठे हर गुण गाए गुरु नानक तूठे। प्रभाती महला पंजवां कर दूजा विवास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अवर ना दूजा ठाओ नाही बिन हर नाओ। सर्व सिद्ध कल्याण पूर्ण होए सगल काम। हर को नाम जपिए नीत काम क्रोध अहंकार बिरसै लगे कै प्रीत। रहाओ नाम लागे दुख पागे सरन पालन जोग। सदगुर पेटे जमना तेटे जिस तुर होवे संजोग। रैन दिन सत्याय हर हर तजो मन के परम। साध संगत हर मिले जिसे पूर्ण कर्म। जन्म जन्म बिखाद बिन से राख लीने आप। मात पिता मीत भाई जन नानक हर हर जाप। प्रभाती महला पंजवां विभास पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रम राम राम राम जाप कल कलेस लो मोह बिरस जाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाहे पाप। नानक बारक कशु ना लाग जाने राखण को प्रमाई बाप। प्रभाती महला पंजवां चरण कमल सरन टेक ऊच मूच बेअंत ठाकर सर्व ऊपर तुही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिदार दैन हार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखण हार मन आराध प्रभु मेक। संत रेण करो मज्जन नानक पावे सुख अनेक। प्रभाती अष्टपदियां महला पहला विवास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा बौरी मन बौराया झूठे लालच जन्म गवाया। लपट रही फन बंद ना पाया सतगुर राखे नाम दरड़ाया। ना मन मरे ना माया मरे जिन किश किया सोई जाने। शब्द विचार पौ सागर तरे। रहाओ माया संच राजे हंकारी माया साथ न चले प्यारी। माया ममता है बहुरंगी बिन्ना मैं को साथ न संगी। ज्यो मन देखे

काल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग जय जयवंती महला नवा राम सिमरो यह तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभजू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है जय जावंती महला नावा राम भज जन्म सिरात है कहो कहां बार बार समझत न क्यों गवार बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले अंत बार संग तेरा यह एक जात है बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है जय जावंती महला नावा रे मन कौन गत होए है तेरी एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिखियन सिंह अत लुभान मत नान फेरी रहाओ मानस को जन्म लीन सिमरन न निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगह परी बेरी नानक जन कह पुकार सुपने ज्यो जग पसार सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी जय जावंती महला नावा बीत जय है जन्म अकाज रे निस दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान काल तो पहुंचो आन कहां जह पाजरे रहाओ अस्थिर जो मान

शीतुर तेण नानक शीतलंग सा स्वजन मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण ज्ञानंग सम दुख सुखं युक्त निर्मल निर्वैरण दयालंग सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित भोजनंग गोपाल कीर्तनंग अल्प माया जल कमल रहित उपदेशंग समित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणंग आप त्याग सगल रेण कै खट लखन पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध स्वजन अजा पोगंत कंद मूलंग बसंते समीप केहर तत्र गते संसार नानक सो घर खंग व्यापते छलंग शिद्रंग कोट बेगनंग अपराधंग किल बिखमलंग परम मोहंग मान अपमानंग मदंग माया व्यापतंग मृत्यु जन्म प्रमंत नरक अनक उपावंग न सिद्ध्यते निर्मलंग साध संग है जपंत नानक गोपाल नामंग अरमंत गुण गोविंद नित प्रत तरन तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रपूर्ण है निराश आस करनंग सगल अर्थ याले है गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखण दुर्वचन भेद परमंग साकत फसनंत सुरजन अस्थतंग सोग हरखंग पै खीणंत निर्पव पै अटवियंग महानगर वासंग धर्म लखण प्रमया साध संगम राम राम रमणंग शरण नानक हर हर दयाल चरणंग हे अजित सूर संग्रामंग अत बल ना बो मर्दन गण गंधर्व देव मानुख्यंग पशपंखी बेमोहन हर करण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वर हे कामंग नरक विश्रामंग बहुजोनी प्रमावण चित हरणंग त्रैलोक गम्यंग जप तपसील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावण तव भय विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण हे काल मूल क्रोधंग कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवंग वस्यंग क्रोत निरत्यंग क्रोत जथा मरकट अनक शासन ताड़ंत जमदूत तव संगे अदमंग नर दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारंग अनक भांत बहु डोलते नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया अकरणंग क्रोत अखाद खाद्यंग असाजंग साज समझिया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर है हे जन्म मरण मूलंग हे जन्म मरण मूलंग अहंकारंग पापात्मा मित्रंग तजंत सत्रंग दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण परम प्यान उद्यान रमणंग महाविकट असाध रोगण वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरो हे संसार ताप हरण करना मैं सब दुख हरो हे शरण योग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समाये समरंत नानक राम दामोदर माधव चरण कमल सरणंग रमणंग गोपाल कीर्तन साध संगेन तरणंग नानक महासागर पैदुत्तर सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मंग हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल पै दुख विनाशन भगत वछला नाथ नाथे शरण नान पुरखा चुत जैन कला तारियो आकाशंग बैसंतरंग काष्ट बेष्टंग जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियंग सासंग श्रीर तारणंग जैन कला मात गर्भ प्रतिपालंग नैछ जंत जठ रोगण
तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नहश जंत तरंग तोयण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन लब्ध्यं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भक्तन मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै सागरंग लंघंत पिंगं तम प्रगास अंधक साध संगेण सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैष्णव न शंखं न चक्रं न गदा न स्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वट भागी उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर हीत मोह पै परम परमणं अहु फांस दीखण कठन पावक तो असाध कोरंग अगम तीर न लंगन पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरन कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगल रोग खंडन साध संगेन गुण रमत नानक सरण पूर्ण परमेश्वर श्यामलंग मदर मानुखयंग हृदयंग भू वैरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग समंत स्वजन अचेत मूडा ना जानंत कटंत सासा नित प्रत्यक्ष जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते हरिचंत पुरख कुटंब लीला अनित आसा विख्या विनोद परमंत परमंत जन्म हार्यो शरण नान करनामय हे जेहबे हे रसगे मदर प्रिया तोयं सत हतंग परम बादंग अवर्त एथ सुध अक्षरण गोविंद मोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतंग बलवंत बलात् कारण चरण कमल नह भजंत तरण समान त्रिग जन्म न हे पपील का ग्रष्टे गोविंद सिमरन तोयंग धने नानक अनक बार नमो नम त्रिणंगता मेरंग सहकंता हरियंग बूडंगता तरियंग ऊनंगता परियंग अंधकार कोट सूर ओजारंग बिनवंत नानक हर गुर दयारंग ब्रह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरतंग संसार गहंग ते नर नानक ने फल पर दर्भ हिरणंग बहु विघ्न करणंग उचरणंग सर्वजी कै लौ लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म करत सासु कर मते समेव चरणं उदरणं पै दुतर अनेक पात कहरणं नानक साध संगम ना संशय महला पंजवां गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख देहं मलीणं मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर बेण अज्ञानन परमाणो पर जंत आकाश दीप लो से खंडन गशेण नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पढ़ंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव लब्ध्यंग साध संगेण नानक सोख्या स्थानं गोपाल भजनं लब्ध्यंग साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेण निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध ना बोहते गाथा गुम्फ गोपाल कथं मथं मान मर्दन हतं पंच सतरेण नानक हर बाणे परहारण
बचन साध सुख पंथा लहंता बड़ कर्मण अरहंता जन मरणेन रमणंग नानक हर कीर्तन। पत्तर पुर जेन चढ़ियंग नह जड़ियंग पेड़ संपता नाम बेहूण बिखमता नानक बहंत जोन बसरो रैणी। पावनी साध संगेन लबंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर ने व्यापण। गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोबिंद रमणंग साध संग में। सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासन।

बाद समन जाओ इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंक न जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगा दी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़े टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतकठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हार जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹੈ ਹਿਵਤਾਰ ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਸਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉਂ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀਂ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ ਆਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾ ਪਾਈਐ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ ਕਬੀਰ ਚੰਖ ਨਾ ਚੰਖੀਐ ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪੈਰੈ ਕਾਪਰੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਂਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰ ਜਰਾ ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰਪਾਰ ਕਬੀਰ ਹਾਰਡ

करते हुए सो होए। कबीर वैष्णव की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस पाप सहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर कर पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरै चून चिहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

आठ कबीर काल करंता अब है कर अब करता सोए ताल पाछे कछु ना होएगा जब सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जनतक देखिया जैसी तोई लाख दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध कहो जम ना करे तिस्कार जिन एहो जमुआ सिरजिया सो जपया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पए सबदास ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गज परे कुटुंब कै कंठ रह गयो राम आए परे धर्म राय के बिचे तू माताम। कबीर सागते सूकर पला राखे अच्छा गाओ ओ सागत बपरा मर गया कोई ना लह नाओ। कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोर चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। कबीर बैसरों हुआ ता क्या पया माला मेली चार बाहर कंचन बारहा पितर परी पंगार। कबीर रोना होए रहो बाट का तजमन का अपमान ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पाला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओड़ हीरा किसका बापरा पुज नारतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबै को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोई मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक न लाग गई जो बस बजाइए फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान ओ मांग सुवार बिखै कौ ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जौहरी लेके मंड हाट जब ही पाइए पारखु तब हीरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिय ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोरे बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जबले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रह निसंक जो जानो निर्दावे रह सो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर ए दो अखर ना खिसे सो गह रहे हो कबीर। कबीर कोठी काठ की दैदस लागी आग पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छड़े संतई जो कोट कमले असंत मलयागर भुजंगम बेड़ो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परया दिशा गई सब पूल ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देह दिवस चार को पेखना अंत खेहे की खेहे। कबीर सूरज चांद कै उदय पही सब देह गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पही सब खेह। जह अन पौ तह पह नहीं जह पौ तह हर ना है
कहो कबीर विचार के संत सुनो मन माए। कबीर जिनों किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई ना बैरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, कबीर जा की दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगट है बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाव हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकहार। कबीर राम है राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे भूत बसे तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सदगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकृ जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया कास की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया कास की लीनी भूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझसे लर परिया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ मैं क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीक से मार मुहे मुहे खाए। कबीर लेखा देना सुहेला जो दिल सूची होए, वो साचे दीबान में पल्ला ना पकड़े कोए। कबीर तरती अरे आकाश में दोए तू बरी अबद, खर दर्शन संसे परे अर चौरासी सिद्ध। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। कबीर बेकार है चितवते झूठे करते आस, मनोरथ कोई ना पूरे ओ चले उठ निरास। कबीर हर का स्मरण जो करे सुखी सो सुखिया संसार, एत उत कते ना डोले जिस राखे सृजनहार। कबीर कहानी पीड़ते सदगुर लिए छड़ाए, परा पूर्बली पावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए, ना हर भजियो ना खत फटियो कल पहुंचो आए। महला पंजवा कबीर कूकर भौकना करंग पिछे उठताए, करमी सदगुर पाया जिन्हो लिया छड़ाए। महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बैसे गाहे, धरती पारना ब्यापई उनको लाहू लाहे।
ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਨੇ ਤੁਹ ਕਉ ਮੋਹਲੀ ਲਾਏ ਸੰਕ ਸੰਗੀ ਬੈਸਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਾਮਾ

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के ना है, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना कर, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ, फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाहकी, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर थातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले सजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तुहे साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश गुन ही परया मैं फिरा लोक कह दरवेश तत्ती तो इना पल्लवै जे जल टुबी दे फरीदा जोड़ो हगन रब दी चूरे दी चूरे जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोलना पिवै उडन संधि डंज हंस उडर कोदरै पया लोक विडारन जाए गहला लोक न जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखिया जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चल सी थके कवले कल फरीदा इट सराने पोए सवन कीड़ा लड़ियो मास केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी समन्वी टुटी ना गर लज अजरा ईर फरेश्ता कह कर नाठी अज फरीदा पन्नी कड़ी समन्वी टुटी ना गर लज जो सज्जन पोए पार थे से क्यों आवे अज फरीदा बेनिवाजा कुत्या एना पली रीत कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई नान वै सो सिर का प्यो तार जो सिर साई नान वै सो सिर की जय काए कुन्ने हेठ जलाई है बालन संदे थाए फरीदा किथे तेंडे मापिया जिनी तू जने ओहे तै पासों ओए लद गए तू अजय ना पतीन ओहे फरीदा मन मैदान कर टोए टबे लाए अगै मूल ना आवसी दोजक संधि पाए महला पंजवां फरीदा खलक खलक मैं खलक वसै रब माए मंदा किसनो आखीऐ जा तिस बिन कोई ना है फरीदा जे दे नाला कप्पिया जे गल कप्पै चुख पवनाइती मामले सहनाइती दुख चबण चलण रतन से सुनी।

विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर परै ही ते परै अपरे अपार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लो एक है निमख तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जिह क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो सर मैं आप है निरारे हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कौन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जिही क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी जा कह होहे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जन परसयो से जन मरण दो थे रहो सत सत हर सत सत सते सत पणिय दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेहे रसन चाखेओ तेह जन तृप्त आगाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार हर गुरु नानक जन परसयो दिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरयो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजियो संसार आपया पुल ना पुलो रतन नाम अपार कीम न पवे अमलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन हूं पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते बौड़ फिर जो ना आए कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिए ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत ना पाए अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जन परसयो ते इत्युत सदा मुक्ते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच के कसरना मिले दान संतरेन जेह लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत्यो मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मदमाता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पार तान पारे अपवाद नार निंदा यह मिठी जी माए हितानी बल बंच शब करते पावा पेक्त संत प्रभ अंतर जामी
ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬੇਦਾਰਨ ਕਹੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬਿਦ ਕੁਲੈ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹੁ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਨ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਤਾਉ ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਬਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਹਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਭਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਕੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੋਹ ਬਡਿਓ ਸੋ ਕਹਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤ ਤਿਉਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ ਮਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਪੁਖਤ ਪੂਖ ਪੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सतयुग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहणै पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परण, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण, जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन

सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगनत तिनको मोह भया मन मद का। 84 लख जोन उपाई रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसै आप ही चितवै आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्याल पूर रहया। अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादक रुद्रादक काल का काल निरंजन जचना। गुरप्रसाद पाइय परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस बेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तार ना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर सदा सब बेदर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुरत दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग कबहो को पावै आत्म प्रगास कौ। बेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको शिव मुन गहे नात जात कबलास कौ। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहा परवाह काहू की जा कै बसीस धरयो गुर हथ।
तीन पवन पर पूर रहे हो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही हो पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे, कारण कारण समर्थ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तै हर परम पद पायो, सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रस ओहियो, गुर अमरदास करतार।

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध। श्री गुरु श्री गुरु श्री

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया केव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पीट हंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्याए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नानक दुनिया कैसी होई।

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जन

कट कट में हरजू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तह कट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेह बा गुण गोबिंद पजहो, करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरै, और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को, नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा, उपजै बिन सह नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई, मद माया कै अंद। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा, शरण राम की ले है। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही, मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै, रूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो, बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी यार बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरै गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत तेहीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ न हर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत। कह नानक।

जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठ नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक ओ भारा खौ खटियौ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावै पांचौ संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछै सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचौ थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचौ संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी ऊचे सुरसुहो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचौ चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा
खष्ट रागी उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट रागी उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कर नाम दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहिया के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकारा खा पाकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा

जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिलबो चह खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए ख्वार हो।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

विचारे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदासन बैठे देवतियां दरनाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सरे

भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मामा हे ता के रूप ना कथने जाहे ना ओह मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जोग जोग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन

हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी।

अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तब तापह जपह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता। तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड अवर नाम कोई। तू जो

जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए शंख उतार, मुया जित कर जाइए तित जीम दया मर मार। अनहद शब्द सुहावने पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तह हो मैं हुए विनाश। सतगुर से

एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान शब्द न पीजै साकता दुर्मत आवन जान साधु सतगुरु जे मिलै ता पाईऐ गुणी निधान मान रे हों मैं छोट गुमान हर गुर सरवर सेव तू पावह दरगह मान रहाओ राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेव्या सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाईऐ गुर निंदा पचै पचान परमे भूला दुख कणो जम मार करै फुलहान मन मुख सुख न पाईऐ गुरमुख सुख सुभान ऐथे तंद पिटाईऐ सच लिखत परवान।

नाम निदान अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हौ मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार हौ तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार सेई सुखिये चौ जुगी जिन्ना नाम अखुट अपार गुर मिलिया नाम पाईए चूकै मोह प्यास हर सेती मन रब रहया।

कह सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औ गुणवंतियां दूर मन मुख गुण तै बाहरे बिन नाम है मर दे चूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन ध्याया।

लाग, नानक शब्द रते हर नाम रंगाए, बिन पैके ही लाग, श्री राग महला तीजा, घर ही सौदा पाईए, अंतर सब वथ होए, खिन खिन नाम संभालिए, गुरमुख पावे कोए, नाम निदान अखोट है।

आओ गुरमत हर लिव उबरे अलिप्त रहे शरणाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मन्नी है।

जिन सब किश वस कीता घर इको बाहर इको थान थनन तरे आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप।

जिन्ना सतगुरु स्यों चित लाया से पूरे प्रधान। जिन कौ आप दयाल होए तिन उपजय मन ज्ञान। जिन कौ मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखां सुख उपजय।

गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ विनसया तजया सब अभिमान।

पिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभु शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह चरण

आओ निमाणया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ हर जपिया आराधिया आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे।

आवह वन्यह पूर राख लेहु प्रभ करण हार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोए ना रखण हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा

राम नाम अमृत नगर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मनहु विसार। रहा

संत संग हर सिमरना, मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप, मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूकै सोग संताप। रहाओ जिस कारण तन तहरिया, सो प्रभ डिठा नाल, जल थल महियल पूरिया, प्रभ अपनी नदर निहाल। मन तन निर्मल होया, लागी साच प्रीत, चरण भजे पार ब्रह्म के, सब जप तप तिन ही कीत।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहा।

रहा सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए, गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए, कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ, गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ, सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत न लागे डंड, गुर नाल तुल न लगई खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड, श्री राग महला पंजवां।

रहाओ। जिचर वस्या कंत घर जियो जियो सब कहात, जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ै शहु सेव तू साहुरड़ै सुख वस, गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगै दुख।

समझवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसहि त्यावहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याए गुर के चरण मन महे त्याए छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिवलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौं तिन कै बलिहार नै जे गुर की पैरी पाहे साध

सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां।

जाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

आए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां। आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए, जिसनों वाए सुनाई है सो के वडकित थाए। आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए। बाबा अल्लाह।

जाए, नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार अस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदै पाए गोरड़ा खे से उबरे साचे स्यों लिवलाए हर जी

जान, बिन गुर कर्म न छुट सी, कह सुन आख बखान। सब गुणवंती आखी है, मैं गुण नाही कोय, हर वर नार सुहावनी, मैं पहावै प्रभ सोय। नानक शब्द मिला बड़ा, ना वे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला।

सुख को मांगे सब को दुख ना मांगे कोई सुख को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए है शब्द तेद सुख होए वेद पुकारे वाची है बाणी ब्रह्म व्यास मन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हों सद बलिहारै जास चहु जुग

क्यों थिर रह सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाओ रहाओ।

राम जप हो सुख होए बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूढ़ा हेत प्यार गुरमुख जा

पूरा तोल, कथने कहन न छुट्टिए, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाइए, बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे, मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले, पाइए रतन विचार, मन बीजे गुर अपने, पाइए सर्व प्यार।

चलो अभिमान नानक शब्द विचारिये पाइये गुणी निदान। श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िये पी विकसे असने। जल महे जी उपाय कै बिन जल मरण तने। मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहे।

अब पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

सच्चा पिण मल बिन गुर प्रीत न उपजै होमै मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पछाणिए अव

कवन पतार अखर पढ़ पढ़ फुली है देखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाई है।

पहला राम नाम मन भेदया अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजै प्रभ रातौ सुख सार ज्यों पावै त्यों राख तू मैं हर नाम आधार मन रे साची खसम रजाए।

गुरमुख मोख द्वार, सच हो रे सबको ऊपर सच आचार। सबको सबको ऊंचा आखिया, नीच न दिसै कोय। इक ने भांड साजे, इक जानन तिहुं लोय। कर्म

महर मलूक कहाइय राजा राव के खान चौधरी राव सदाइय जल बलिय अभिमान मनमुख नाम विसारिया ज्यों डव दधा कान मनमुख

मन मुख पात गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसया, अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, आनंदन भगत।

रहाओ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चौं दिस जाए, जेता उड़ है दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ, तिन्ना पास न बैसीय ओना कर ना गिराऊ। कटिय है तै नित जालिय है ओना।

शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरणा वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मनमुख शब्द न पावै।

जियो हो सतगुर विट हो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लहर लाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां कौ जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो

मात पिता सुत हेत मात पिता सुत ने कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करणी कार कराई राम।

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै बन जारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, बन जारिया मित्रा, आम घटै दिन जाए, अंत काल पछ

खोवहो। गुर सतगुर स्वामी भेद न जानहु, जित मिल हर भगत सुखांदी। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफलो रैन भगतां दी। श्री राग महला पंजवां।

पकड़ चलाया मन मुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवे सो खात कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद इयाणी पे यड़े क्यों कर हर दर्शन पिख है हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सोहरड़े कम सिख है सोहरड़े कम सिख है गुरमुख हर हर सदा त्याय सहियां विच फिरे सुहेली हर दरगाह बां लुड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम के रखे मुंद इयाणी पे यड़े गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा हो मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाओ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

प्राण अधहरे गुण साध संग मिल गावे नानक के स्वामी तार अनुग्रहो मन तन अंक समावे दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोई न दिसै डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी विचारिय जियो सिमरत।

मोहयो हो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियन कर बस पए मन सब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन वन जवा

अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द विचार जिहवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चा सद

मन मूर्ख मिलै सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कब हू ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे। जम का फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए। मन मुख किशु न सूजै अंधले।

कमाए, कूड कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुन हो जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

देओ पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अफसर ना पछाणिया। उनमत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कम

जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपुर अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजे सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो, गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया।

बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, अंध विनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सा गुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौं जीवा जियो। दुख पंजन निधान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहौ मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन गुरु।

तू संतन की करहे प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन कह मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिन कह संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पंजवा।

पावै। नाम निधान तिस है प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघना, जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना। तिस है प्राप्त हर हर नामा, जिस मस्तक पागीठा जियो। हर एक हथ आया बरसाने बहु तेरे, तिस लग मुक्त भए कनेरे। नाम निधाना गुरमुख पाइय कहो।

अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो, गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय बसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो, माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावौ, प्रभु दया ते मंगल गावौ, उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो, नाम औखद मोकौ साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया, आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो, जिस

और न लेखा पुछ बलाया। इस सेवक कै नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो। माज महला पंजवां सब किश कर्म है बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो। चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द बिचारा। आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया।

तू सूखम होवा अस्तूली, तू जल निद तू फेन बुद बुदा, तुद बिन अवर न पालिए जियो। तू सूत मणिए पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मध अंत प्रभ सोई, अवर न कोय दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्वाण रसिया रंगराता, अपने करतब आपे जान है, आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे, तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक भूरी नदर ने

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई, सब पौ बिनसै हर हर त्याई।

साथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पौ परम खोया गुरपूरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊच अपारा नौनिद नाम भरे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

वै सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिलै, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

मन भिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हो वारी जियो वारी एक सिउ चित लावणिया गुरमति मन एकट घर आया।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

आनदिन सार संभाल हर राख गुरमुख सहज समावण्याम। तुद जेवड मैं होर ना कोई, तुद आपे सिरजी आपे गोई, तू आपे ही कड़ भन्न सवार है।

मन मुख मुगद करह चतुराई नाता तोता थाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावण्या मन मुख अंधे किशु ना सूझै मरण लिखाए आए नहीं बूझै मन मुख कर्म करे।

गुर कै शब्द अधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जानणिया। माज महला तीजा, तेरियां खाणी तेरियां बाणी, बिन नावें

अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए।

गुरमुख महल चुका बनिया, गुरमुख महल चुका बनिया, माज महला तीजा। गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा। मन उजल सदा मुख सोह है, अत उजल ना

रहाओ। गुरमुख जीवै मरै परवान, आरजा ना छीजै शब्द पछाण। गुरमुख मरै ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच हो आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर, गुरमुख होमै चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल

अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिए शब्द सुहावे गुरमती मन सचो भावे सचो सच रवह दिन राती इह मन सच रंगावणिया।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत गुण गा बनया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानने, जिस को तू प्रभ

आए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत है ना जाए प्रभु बिन दूजा को नहीं प्रभु बिन दूजा को नहीं।

विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवे अंधा फूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने होमे विच दुख काले नानक गुरमुख होमे टुटे ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी

आहे वन खंड वासा एक भगवान वेस कर फिर है जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जम

खुआई सब जग ठगो ठग आई जाई तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाई श्लोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया।

पुरख अलाख शब्द सुहावना मन्ने नाउ बिसंख दरगाह पावना खालक कौ आदेश टाडी गावना नानक जुग जुग एक मन वसावना खालक कौ आदेश टाडी गावना।

आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझे। कह कह कथना माया लूझे, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक अखियो आप। लह प्रांत होवे जिस दात पौड़ी।

एक गाव है एक भगत करे है, नाम न पाव है बिन असने है। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पिर राख्या सदा उर धार। भगत कर है मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वश

इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा, इस काल युग में कर्म

तीजा तेई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव कड़े गुण समलै सहुरे वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरै पेय फिर वसै कहो कित बिद पाइय।

मुरारा, शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाइया।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा

बिन सजाए कूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग।

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साथे तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

गुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी मिल

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर पोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो मन

इस ग्रह में है कोई जागत रहे, साबत वस ओह अपनी लहै रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती, मुसन

अनेक कोठरी अनेक कोठरी बहुत भांत करिया आप होआ रखवारा। जैसे महल राखे तैसे रहना क्या एहो करे बिचारा।

मानस देहे बहुर नह पावे, मानस देह बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कशु उपाओ

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सबर।

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

पहला प्रथमे ब्रह्मा कालय घर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजय सो काल संघारिया।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना नाम हो पुले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राख हो रहना।

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं भ्रमणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वसया सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई नानक सच नाम मल खोई गौड़ी।

मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त्र सिमरत सोध देख हो कोए, बिन नामै को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कलमह

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

मांग है लई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को विरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते जो मुह फेरे तेरे मुख बुरे दिसन अन दिन बद्धे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुण सार रहाओ से भगत हर पावंदे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओह क्यों मनहु विसारिय हर रखिय हृदय धार नाम मिलिय पत पाइय नाम मन्य सुख होए।

मन कर हला सतगुर पुरख ते आए रहाओ, मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगी है हर आपे लै छाए, मन कर हला अत नि

मन कर हले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख डंड अरखेदा, जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किश एक है।

भागय। जास जपत बस आव है पंचार, जास जपत हृदय अमृत संचार, जास जपत ए तृष्णा बुझय, जास जपत हर दरगह सिजय।

कृपा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

दिन सबेताला गिर तर धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

लो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पश पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

नाम समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता।

सिमरन है आत्म घाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवां।

बाहर संग रखवाला पूर्ण पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस

दिखारिया गुर निव निव लागो पाए दिहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक बलहारिया सब गुण किस ही ना है हर पूर पंडारिया चहु दिस जपिया नाओ सुख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुर का

मंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

जियो गुरपुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री धर क्यों मिलहै तुझे उडीनियां कर कर है सेवा शीश चरणी।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोकन आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एक।

या जुग मह एक है कौ आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना देवनहार मन है बिसराना तार हो कृपा जिस है गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही श्लोक

होवनहार होत सद आया, वाका अंत ना काहू पाया। कीट हस्त महपूर समाने, प्रगट पुरख सब ठाऊं जाने। जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तिह जपना। श्लोक

थित पाव हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यों या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

नमः सद्गुरु ए नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आ

से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरहें से बेमोहताजे, प्रभ कौ सिमरहें से सर्व के राजे, प्रभ कौ सिमरहें से सुखवासी, प्रभ कौ सिमरहें सदा अविनाशी।

प्रभु कौ सिमरहें से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन सुख बिहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरहें तिन निर्मल रीता।

राष्ट्रपदी। जह मात पिता सुत मीत ना पहाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। जह मुश्किल होवे अत पहारी, हर को नाम खिनमाहे उदाहरी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग ते

छूटत नहीं कोट लख बाहे, नाम जब तह पार पराहे, अनक बिघन जह आए संहार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जोन जन्म

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सोन।

अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कम दृष्टानी। जिन तू साज स्वार शिंगारिया, गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद।

अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काड लेहो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कश करे छिपाया। बाहर ज्ञान

नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहै, मिथ्या हस्त पर दर्व कौ हिरहै। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद। मिथ्या

सिमरहु तिस रसना जिहि प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई ध्यावन जोग जिहि प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहि।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कै। जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास।

साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट त होत निहाल। साध कै संग कलूख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।

सो पंडित जो मन प्रबोधय राम नाम आत्म महसोदय राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश।

अष्टपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राख को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका

मन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थम मन। ज्यों पाखाण नाव चढ़तर है प्राणी गुरचरण लगत निस्तर है ज्यों अंधकार दीपक प्रगास।

जाप अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

सृष्टम। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

सेवा करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे, भगत मुखे ते बोल दे, से वचन

परे हर वस्त संभाले नाम निधान हर बन जिये हीरे पर वाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ परम पवाई है ज्यों चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया।

मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जां गुर कहे उठो मेरे भाई, बह जाहे पुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कढे लद्दो वारे। ओए अगै पिछै बह मोह छपाए।